0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी एकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो केरे मेंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे ही राज्य के आडू
3: मामा हालू की है ने
4: अल्हम्दुलिल्लाह दारिफुलु मेंगे हालू की है ने ता
3: आरमे में स्रंगल मामा कौन कमें तेरी कोल्लनी गेने मामा आरमे गाता
5: मामा ती हावोर को मुले ने कमें ने आरमे ती कं कोल्ला फानो
4: दारिफुलु में हाय दरंगडे ती गुता मामा गाता न्यास मामा हालू बलाला मामा के कंतत्ता कोल्ला देती मामा वारंग उफावे

0: रीति हदया गणस्ते फा मिफार बदल को ले रुम्योति शाउरा या गुड़ा ले फा अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: शाउरा किने हाल
1: हाल रंगा
0: के कलणी में तुम्हें
1: कमेंट
0: न करंग हम प्रोग्राम तैयार हो लागे मितिमें मेको दे मितिपने हम को मैं कुछ का गुड़ा ला रस्तो शाउरा मासिक का तैयार था कोंगा करे नगाने मिहारो बाकी अकोरता मेरे शावियानी फैशिगेंगोस लावियान्या
1: शावियानी
0: शावियानी हिंगा शावियानी को मासिक के बदलो शावियानी का मियो मासिक का की बस शावियानी का मियो ती बस मालंगे हमा देम में बारे कुछ जावेस लिबुन मसे क्या मिलती? ऐ हमारे बस मालूम के गोले नत्ता अनकस करदास कोले मेनागने मिफारो मेले बुनो लफ्सा की फेंग ऐ हमें मफेम मिलाफ्सु बैन को के अनकस जुमले इंगा दाल दें वे
1: फेनकी
0: वारम मैं ऐच्छे आदि जुमला ऐ हाँ हमें जे है ना इंगते का हिरनो हिंगा पा
1: फेनकी
0: वारं अगुहुरी एच्छे जुमला रंगाड़ोंगे एकम दते बुनल दीबा कीवेकं फें एहा अगुहुरी एच्छे कम मिवानी इंसानों ना वारं मुहिम एच्छे तो दुआ कोमे कुछ बस दुआ लेके मच्छा कितत ताशी फेंबोंगे बजे है
1: अत्ताशी
0: अत्ताशे फेम्बो एकें कोमे कुछ का समरंगला मासे के कोरे वैनी कोमे दोहा कुछ तो
1: लब्बा
0: ओके तेम्मियोती वाह के ओ तैयार ता
1: लब्बा
0: वाह के ओ के फैशन मिहार गोस्सेंग हिसाब क्या देनेंगे
1: लब्बा
0: माँ दोरनों हिसाब को एक कुड़ा कुड़ा रीति आवश्यक ओलों उमरों अंग आहारों के जानने की वरंग हालनी ऐहन्ना में सिंगियो कुछ जान गे गे के फुरगो गवार रीति बगीचाएं गोए एना गे काफ बुना गतुं एई हमाय

0: طرحة.
1: بیت میں دیا ہفتہ گا علم افیدون گارنون نواتا گارنون تا گا اصلاح تکا بالا لائر گا رئیس الجمہوریہ گے گارار نمبر سول ابلک دیہا سبیس نیشنل ایکسچینج لیمیٹڈ افید دیو گوائدو نمبر اٹی ہر نوین ہائفن آر ابلک دیہا سبیس گوائدو نمبر اٹی ہر فہین ہائفن آر ابلک دیہا سبیس فولو ہوں گے وزیفہ گے گوائد دیون اصلاح گے نوم گے گوائدو گے ترون گوائدو نمبر اٹی ہر اشین ہائفن آر ओब्लिक तिहा सब्बीस गवायद नंबर सात हाइफन आर ओब्लिक तिहा सब्बीस वजीफा बेहे ट्रिब्यूनल के गवायद तिम्मण इस्लाह के नौम के गवायद अदि गवायद नंबर अड्डे हतें हाइफन आर ओब्लिक तिहा सब्बीस मॉलिस मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के गवायद मि इस्लाह फाहा कोलेवे देन मालूमत होदन एदे मीहा सामालुकन देन चेहेने कंत तक की कोबैतो
2: ಅದೆ ಮೌಲುಮಾತಕ್ಕೆ ಎದೇರು ಮೀ ಕುರಿಮಿಸ್ ಮೇರವನ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೇಗ ಹುಣ್ಣೆಂಚೆ ಮೌಲುಮಾತ ದೆ ಮೀ ಮಲ್ಸ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊರಿ ವರ ಮದು ಮೌಲುಮಾತ ಮೀ ಜೆಹೆನಿ ಎ ಹುಷಾಳ ಫರಾತೆಕು ಮೀ ಏಗ ಹಿಮನುವಂ ಕ ಮೀ ಗುಳೆನ್ ನಂಬರೆಂಗ್ ಎಟ್ರೆಹೆಂಗ್ ಎಗೊತ ವರ ಮದು ಮೌಲುಮಾತೆ ದೆನ್ ಎ ಮೀ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಂಗ್ ಅಳ್ವನ್ ಮೆಂಗ್ ಮೀ ಎ ಹಿಮನಂಚೆ ಮೌಲುಮಾತೆ ಫೊರಿ ಹಮೆಂಗ್ ಹಿಮನು ಹಿಮನುವಂ ಏ ಹಮ ಎಬೆ ಬೊಡ ಸಮಾಲ್ಕನ್ ದೇವನ್ ಜೆಹೆನ್ ಕಮೆ ಏಗೆ ತುರ ಎ ಹೋದಂ ಬೇನುವನಿ ಕೊ ಮೌಲುಮಾತೆ ಕಂ ವರ ರಂಗಳ ಸಾಫ್ವಾ ಗೊತ ಎ ಮೀ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಜೆಹೆ ಎಬ ಹಿಮನುವ ಏಸು ಗೆನಫಾರ ಎ ಬೇನುವನಿ ಕೊ ಮೌಲುಮಾತೆ ಕ ನೇಂಗೆ ಕಮವನ್ಯ ಇದಾರೆ ವರ ದತಿವಾನೆ ಮೌಲುಮಾತೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ದೆಮ್ ಅನಕವಸ್ ಮೀ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ಲಾಹ ಕೊರ ನೋಡಿ ಎ ಮೌಲುಮಾತೆ ಕೆ ಕೊ ಬ್ಯಾಕಂ ಹೋದಂ ಎ ಹುಷಳಿ ಫರಾತೆ ಕ ಗುಳಾಗೆಂ ಎ ಇತುರ್ ಮಸಕತೆ ಕೆ ಮಿಜೆಹೆನಿ ಕೊರೆಮ ವರ ರಂಗಳ ಗಾನುಂಗೆ ಸೊನ್ನಾನ್ ಎ ಹೋದಂ ಬೇನುವಾ ಮೌಲುಮಾತ್ ವರ ಸಾಫುಕೊ ಎಂಗೇನೆ ಗೊತಕಂ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹುಷೇಳುವಂ ಎಹಮ ಏಯ್ ಎಹಮ ಎ ಹುಷಾಳುವ ಫರಾತಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಸಮಾಕನ್ ದೇವನ್ ಜೆಹನ ಕಮಕಿ
1: ಅಳು ಮೆನ್ನಂ ಅನ್ಕಸ್ ಇತುರು ಎ ಹೊಂತೆರೆ ಕ ಗುಳಿ ಫಮಿವಣಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಕೊಬಾತೋ ಸುವಾಲಕಿ ಅಳುಗಣ ಮೆ ಮೀರೆ ಮೀ ಬಲಾಲನಿ ಮಾಲುಮಾತ್ ಹೋದಾ ಲಿಬಿಗತುಮುಗೆ ಹಕ್ಕುಗೆ ಗಾನೂನ
3: ಅಳುಗಂಡು ಬೇನುವ ಜವಾಬ ಕಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಾಳ ಒಫ್ಸರ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರ ಮಾನ ಕಮಸಾಯ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಪುಣ್ಣ
2: ಅದೇ ಮೀ ಗಾನೂನ್ಗೆ ತಿರಿಸ್ ಹವನ ಮಾದಾಗ ಭಯಂಕ ಫೋನ್ನಾನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೀ ತಿರಿಸ್ ಹವನ ಮಾದಾಗ ಹೂರಿ ಕಂಕಮಕ್ಕಿ ಏ ದಾರ ಹಾಮಕ ಫೋನ್ ಜೆಹನ ಮೌಲುಮಾತ್ ಏ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನಮ ಗುಳೆನೆ ನಂಬರ ಮಗಾಮ ಎ ಮೌಲುಮಾತಕ್ಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಇದಾರ ಕವೆಸ್ ಅಮ ಆಮುಕ ಫೆಣ್ಣಂಗ್ ಹುಣ್ಣಂ ಜೆಹನ ಅದೇ ಏ ಹೆಂಗೆ ಮಿಸಾಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಂಗ್ ಇದಾರೆ ಕಮ್ಮವನ್ಯ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ
3: ಬಲತಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರೆಯ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ಕೋದ ಮಯಾಂಜ ಮಾಡ್ಕೋದ ಹಿಂದಿ ಹುಡುಗಿಯ ಮೀರಿ ಅತ್ತ ಬಲತಿ ಎತ್ತಾಗುವ ತೀತೋ
2: ಅದೇ ತಿವಿದಾಳುವ ಮೌಲುಮಾತಕ್ಕೆ ಹಾಮ ಕೊರಂಜೆಹನ್ ಮೌಲುಮಾತ ದಂತಿ ಫಾಹಕುರ ವಿಗೊತಂಗ್ ಮೀ ಅಳುವನ್ ಮೆಂಗ್ ಮಿದಿಯಾರಸ್ ಹಮ ದೌಲತ್ಗೆ ಹುರಿ ಹಾ ಇದಾರಾತಕ್ಕೆ ಮೊನಿಟ ಕುರಿಂಗ್ ಮೀ ತಿರಿಸ್ ಹವನ ಮಾದಾಗ ಹುರಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ಏ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮೌಲುಮಾತ ದೆನ್ ತಿರಿಸ್ ಹವನ ಮಾದಾಗ ಹುರಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ತಂಗ್ ಹಾಮ ಇದಾರಾತಕ್ಕ ಹಾಮ ಕೊಫವನಿಕೆ ಹಾ ವಿವರ
3: ಅಳಗೊಂಡು ಉಳ್ಳ ತನಕ ಅವ ಸರ್ವಸ್ಮಿಯ ಕಂಡೆಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಕಾಕು ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಸಿಹಿ ಬಾಬಿ ಸಾರ್ ಒಂದು ನನಗೆ ವಜೀಫ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಕೊಪ್ಪ ಮೊದಲು ಮಾತು ಹೋದ ನಿಜಗತ್ತಮಗೆ ಹಗ್ಗು ಹೋದ ದಾನಿ ಕಾಕಾದಿ ಮಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಂಗೆ ತಂದೆ
1: ನಮಗೆ
3: ಸ್ಮಿರ ಎರಡು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಕೊಡ್ಲಿ
2: 100% me balani hama information officer ge maulumata ekika ehmeema algonmen hama idara takan me maulumat for ko demun dani me huriha maulumata ki idara ko ham korin jehen maulumata ekka
3: den misara ka me reformana technology ge zamane me phone taka phone wane phone ka bala me kunu wala endatta huriha me ne phone taka ne bala ne ekum idara ge zimma ekama ogonda engifoti మీ మేనేజ్మెంట్ కండాల మీ బేపులకు ఆఫీసర్ కి మగామ నగామ బేపులకి నమ బేపుల గుణే నంబర్ హెచ్చి నోటీస్ బోర్డుగా తనకి మాజీఫుల్ ఎంగే ఒక గుణం చేయను తమాగిపోయే నొసైనా హెచ్చి
2: అదే రంగుల వాహకేతో హమతే దాడువే ఏ హమ ఉన్నం చేయను కోయి
1: అదే రజాక్ బాకీ వేలా నెంగేతో వరపడ శుక్రియా ప్రోగ్రామ్ কবাতো নিম্মাওয়াল বামুম ফাহা কল্লানে কামকি মিগানুনা বেহেগতো
2: আদে আরগন মেন মামি এমে বড়া হামা ফাহা কল্লাম বেনুমানি মিগানুন মিহার বারা হারবে গেন্দায়রো মি কুরেবরে বড়াং আম মেদানি হেলুন তেরিবম মিগানুনা দেতেরে একে হেক্কে গোতালগন কুরেস ফাহা করে গত ইদারা তাক মি হোশেলে রিকোয়েস্ট মি আননি এদোহঙ্গনে দ এঙ্গারুং এঙ্গারক গিনামম হাম এআই কো আলগন মেং এবা বিসনঞ্জে মি দাওলত কে ইদারা তাক উমবেস মি গানুনা দেতেরে মি দেখে মি গোই বদল কো বিহাস মি এদে মালুমাত কাং এদমুং এদুমুং এ অন্য মুদ্দত কে তেরে কে মালুমাত ফোর কো দেন হাম ইদারা তাওগে হুরিহা এমএস ওয়েরিং কে লেভেল উম ফেশিং ইনফরমেশন অফিসার উমবেস এবে জেহে মে কাম মি সামা কান্দে বান্দে মে এগুল বি বেফরা ফা করে গত এ গানুং গে বয়ে ইনফরমেশন অফিসার কে মালুমাত আমি হুরিহা চং হাম কোরং এম এ ইদারা কে মাসউলিয়াত এ আলগন মেন নং একং কামা গোলে গত মালুমাত ফোর কো দি হেলুন তেরে কুরবেনি আলগন মেন কে ইদারা কে ওয়েবসাইট কে গোস এ হাম কোরং জেহে মালুমাত এং হাম এন কুনু কুরেবেনি এ ইদারা কুং এমসকে কুরিয়া একং কুরবেনি দেন এহম মাউলুমাত ফোরকন নু দিনুমগে সাবাবং আলগন মেননা হামেন আনে শাকুয়া তাকা শাকুয়া তবেস আহারং আহান মিয়ান্নানি হাম ওয়ার বড়তং ইতুরুওয়াম এই হাকিকাতুগা হাম মি বরং হিতাম বেরিকামেন এই ইদারা তাকো মাউলুমাত ফোরকন নু দিনুমগে সাবাবং মিয়ান্নানি এ রাইয়তু মিহাগে হাগগেন এই ইদারাগে মাউলুমাত কি এ দো নুকুগেন এ অন্ন নোনি মুদ্দত কে তেরেকা এবেস জবাব নু দিগেন মিয়ান্নানি শাকুয়া কমে আহার মে ইনফরমেশন কমিশন অফ এম মে গানুনকে দশং মে কমে দারাক স্লাজিম কফ নখামে দেত মে ইস্তিসনা হালত কনু ফেতে কম নিয়া মালুমাত দুকুরু এম মে কমং মে সামাকান দেবং এই আরওয়ান মেং হাম এদেদ মকি দেং হাম ইয়াক রাইতো নারওয়ান মেং হাম এদেদ মকি এ বেফলুম মে গানুন গে বেনু কোরা ব্যাগেন হাম এ বেফলুম এ বেনু ওয়া কাঙ্কাং হো দে মং হাম মে কুরেং তানু গেস মাসেকে কোরা ওয়াশে এই এহেন রোটা দিউমবরে ইয়াকিং খাং অন্যানে মে কানুনগে দশং মাউলমাতং এতু এতু নিমা এ মাউলমাতে লিপুমগে ইয়াকিং খাং
1: আদ এফাদা মুসসাসায়ক বেস কাহালাগে ফিয়াবলিং আলুফা গোতত্তো মিউতিনুনিয়ামো কিহিনেতো এফাদা ইদারা তাক মি মুসসাসা তাক মেদো কান্তাক কোরবনি
2: মাউলমাত ফোর কন্নো দেনু
1: মুসসাসা আদ মার কোরগোতক
0: আমুকো মি গানুনগো ওবে জুরিমানা কোরেবে হালেত তাক দেং হেনামবেস মিহাতনাং আরোগা এগতকাং অলমেন জোরমানা কোফের নোবে দেং আডহুনতকা হাজির নোয়েগেন এবাহুরি মি নোনিয়ামো আডহুমুকা মি কমিশনার ফাহা কোরেবে কাংকামা সাফ কোনু দেবিগেন এবহুরি জোরমানা কোরেফা নোনিয়ামো আডহুমুকা ব্যাভের নোয়াতি বেবহুরি জোরমানা কোরেফা এহালেতহুগা
1: মিহার মেবানি আলুন মেঙ্গে মি প্রোগ্রাম গে নিমমকা হিসাবং এস দে আলুন মে মিরে মি বালালি একেন অবলিক দেহা সাদ মালুমাত হোদা লিবগতুমগে হাগুগে গানুনা মিরে গে প্রোগ্রাম ফোনো আদিনুমগ ওনিয়া প্রোডিউসার গে গতুম হারকা তেরবি ইহসান আব্দুল্লাহ আদি আয়শাত ফিনা ফিরাক ওনিয়া অপারেটর কি সুদা সালিম আন হাফতা গবে সালুন মে মোলিং আ গানুনা কা ಬಲಾಲಾಣ ಇರಾದ ಕೊರೆವಿ ಅಣ್ಣ ಹಫ್ತಾಗೆ ಹೊಣೆ ಹಿರಿದುಗೆ ರೇವೆಸ್ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲುಮ್ಗೆ ಉಮ್ಮಿದುಗ ಮಿರೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಲ ಫಕಿವೆಲಾಣ ಇಮ್ಮೆ ಆಯ್ಮ ತೆರಿನ ಸ್ವರಂ ಉಫಾವೆರಿ ಬಾಜವೆಡ್ರಿಯ ಕಂಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो हो केरे मिंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे ही राज्य के आडू
3: दिवे बहु के फोंग आयुध मा शौगर वाफरात तरह खास को दिवे राज्य आडू के दिस्तनी
4: बसवार